सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: नवनिधि शर्मा द फादर ऑफ त्विशा जॉइंस मी वन ऑन वन फॉर द फर्स्ट टाइम।
2: शुरू में ही देखने को मिल गया था कि क्रिमिनल माइंडसेट है। भेड़िया ने बकरी की खाल में शिकार किया है सर, दे आर कैमेलियन पीपल।
1: अ ब्रदर मेजर हर्षित स्पीक्स आउट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल टेलीविजन।
3: वी हैव बीन फाइटिंग नॉनस्टॉप, we are not stopping until the justice is served.
4: Missing, where is your son? Let me ask you that pointed question.
5: He is ready to face all the questions, but he has to exhaust his legal remedies.
6: Breaking news coming in, Samarth Singh has finally surrendered. These are fresh visuals coming on your screen.
7: Number
6: first on NDTV.
8: Aap surrender karne aaye ho ya surrender nahi karne de
6: rahe? NDTV is the only network in the country that is relentlessly chasing this case.
1: Joining us live now for the first time is Brigendra Singh, senior advocate, appearing for Samarth Singh.
9: The girl has gone because of the pressure created by her own parents.
1: These are difficult circumstances, but the hard question.

0: they have not scheduled to meet him today. There is another development, though, worth watching. Yusuf Pathan is expected to arrive in the national capital amid speculation that he could join the dissident camp. And at the center of this rebellion is Kakoli Ghosh Dastidar, who claims that around 20 MPs want separate seating in parliament and are prepared to work in conjunction with the central government. Our sources are indicating this is the current state of play.
1: This MP ka naam diya hai. आपको मालूम होगा किस प्रकार से महाराष्ट्र में स्प्लिट हुआ था शिवसेना का, तो वहाँ तो एमपीज के नाम आए थे ना कि ये लोग अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी तो इनको बताना चाहिए ना कि वो 20 एमपी कौन से हैं, और ये लोग इतना ही उसमें है, तृणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना, जाए लड़ें बीजेपी से। इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग, पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले, तब तो सब कुछ ठीक था। इसमें बीजेपी का खेल है, ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है, पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है, कई लोगों के तो ऑफिस ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है।
2: तो सब तृणमूल का सिंबल में जीता हुआ है, पार्टी का एमपी है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वर्कर है और वोटर्स है, सपोर्टर्स है, पब्लिक है, वो देख रहे
3: हैं। We have bitterly experiences in Maharashtra. And without the support of someone, how would you dare to leave the party? And what are you going to gain out of it? You are elected from one party, which is supposed to deliver justice to the common man, or just deliver some goods to the common man, service to the common man. And irrespective of, without, you are forgetting that, now they want to strangulate TMC, so that henceforth nobody can stand.
4: ये नौटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को ऐसा हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए, तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी।
5: मोदी और शाह के जो बीजेपी, वो क्या करते हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, जो लोकतंत्र जहां है वहां जाके वो तानाशाही दिखाता है। हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना को दो किया हुआ है, हमने देखा एनसीपी का विभाजन हो गया है, तो वही हो रहा है टीएमसी का भी, यही कर रहे हैं कि उनको एमपीज चाहिए, फिर उनको बिल्स पास करना है, विधेयक पास करना है पार्लियामेंट में, जो राज्यसभा है या लोकसभा, तो इसके लिए ये सब खेल खेल रहा है। और मैं आज बोल रही हूँ कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, उनको एक डिक्टेटरशिप चाहिए इंडिया में, और हम लोग विरोध करेंगे।
6: देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, डूबते जहाज पर कौन बैठता? ये टीएमसी डूब चुका है, जनता खोज रही है कटमनी का पैसा, दो कोई साड़ी के नीचे घुस रहा है, कोई संदूक में घुस रहा है, कोई टमाटर से मार रहा है, किसी को पत्थर से रगेद रही है जनता, किसी पर अंडे फेंक रही है जनता, ये जनता खोज रही है जिसने शमशान से लेकर के घर तक सब जगह कटमनी लिया।
7: सवाल तो ये पैदा होता है कि असली टीएमसी अगर संख्या बल से देखा जाए तो विधायक भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, एमपी भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, तो फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या नकली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करके इंडिया लाइंस में बैठे थे? और बात तो यही है ना कि पुत्र मुंह में पार्टी गई, पहले पुत्र मुंह में जो हमने देखा है कांग्रेस पार्टी बर्बाद हुई, डीएमके बर्बाद हुई, पुत्री मुंह में एनसीपी बर्बाद हुई, और आज टीएमसी भी भतीजे मुंह में बर्बाद हो रही है। ममता बनर्जी अनफॉर्चुनेटली भतीजे को ज्यादा प्राथमिकता देती हैं, तो विधायक भी और सांसद भी उनके साथ नहीं रहना चाहते, मतलब पहले जनता ने रिजेक्ट किया फिर जनप्रतिनिधि ने।
0: Meanwhile, rebel TMC MP Kakoli Ghosh disputes TMC leadership claims and says a 20 MP faction has chosen to function separately, backing its move as aligned

0: much pampered effort and propaganda he did for the Ujjwala scheme free from smoke and all the problems. And he is cutting down that. And saying that this food is average enough is something he is living in the ivory tower. And his friends are living, I mean, his advisors are living in the ivory tower. They don't know the reality. People have realized this is the government when they make the false promises. Later on, they call it a Ujjwala, come to the power. And first thing they do is to stab them. So they'll get back the price what they are doing with the poor people of this country.
1: Mr. Rai, thank you so much for joining us on behalf of the Samajwadi Party. The government is citing losses borne by oil marketing companies. You've heard the Congress and the Samajwadi Party's thoughts on the welfare beneficiaries absorbing part of this burden. They are criticizing the government's move and the reduction in subsidized cylinders, saying it disproportionately impacts poor households. All right, let's switch tracks now to the insider details as far as that India bloc huddle is concerned. The India bloc meeting ended with a promise to meet again in Hyderabad in August, but not without tension surfacing within the alliance. According to reports, Rahul Gandhi urged allies to stay united and stop attacking each other while expressing disappointment over the lack of support on issues like vote theft and criticism of Congress by partners. You must note the left questioned Rahul Gandhi's remarks on an alleged CPIM-BJP understanding in Kerala, with Rahul Gandhi clarifying that it was a political comment, not an ideological attack. And then there was Mamata Banerjee raising the issue of post-poll violence in Bengal and urging allies to visit the state. At the meeting, Akhilesh Yadav also stressed about alliance unity while he was flagging the absence of the DMK and the Aam Aadmi Party from that huddle in the national capital. Here are the political reactions you need to listen to.
2: आज की जो इंडी अलायंस की मीटिंग रही उसमें वोट चोरी का तो मुद्दा ये लोग प्रथम मुद्दा बता रहे हैं, परंतु आज तो अलायंस चोरी हो गया। कहां थी डीएमके और कहां थी आम आदमी पार्टी और कहां थी जो असली टीएमसी? तो ये तो अलायंस चोरी हो गया, क्योंकि जो अलायंस पार्टनर भी थे, जो आए भी थे, चाहे वो लेफ्ट हो या चाहे वो उद्धव सेना हो या चाहे वो जेएमएम हो, वो सब तो उनके साथ नाराज चल रहे हैं। तो एक प्रकार से अलायंस चोरी हो गया इंडिया अलायंस में। ये वोट चोरी का मुद्दा तो केवल ये लोग आते हैं, मिलते हैं, बातें करते हैं, पेपर पे अलायंस होता है पर रियलिटी में नहीं।
3: जब बहुत सारे पार्टी एक साथ आता है, समस्या होता है कभी कभी, लेकिन आपको आज याद रखना है कि आज 25 पार्टी आई हुई है। इतने सारे पार्टी आई हुई है क्योंकि बहुत सारे समस्याएं इस देश में। अभी आपने देखा है पेपर लीक, उसमें नीट का पेपर लीक, सीबीएसई में बहुत समस्याएं, और इनके जिम्मेदार कौन है? इस देश में 2014 के बाद एक लोकतंत्र देश में अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई इस्तीफा नहीं देते।
4: सी बेसिकली व्हाट वी फील इज दैट राइट नाउ द इश्यूज आर वेरी वेरी सीरियस इन द कंट्री आर एस्केलेशन द प्राइसेस the petrol, all those things, in which the market is very high right now. The common man cannot afford to purchase anything. So, and at this, forget about gold. Who goes for the gold, yeah? The common man needs bread and not butter, bread and dal, I can say. He is not able to afford that also. It has become so costly. The main issue is that only. First thing is that that we should remain united. All the opposition should come together and work unitedly.
5: अभी 2029 छोड़िए, अभी तो 2026 की बात करिए। तत्काल जो सबसे बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा है, जिस पर पूरे देश के नौजवान बोल रहे हैं, पूरा इंडिया गठबंधन ने भी तय किया, अब इस पर होगा। सेकंड सबसे बड़ा मुद्दा जो है, इतना बड़ा आर्थिक संकट है और सरकार बिल्कुल लगता है कि बेखबर है। हर रोज़ थोड़ा थोड़ा करके, कभी पेट्रोल, कभी डीजल, कभी रसोई गैस। तो हम लोगों ने जो कहा कि ऑल पार्टी मीटिंग तत्काल बुलाओ और पूरे इकोनॉमी पर डिस्कशन हो, मेरे ख्याल से ये दो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए।
1: Well, Justin, just days after taking oath as Karnataka's chief minister, DK Shivkumar is finding that cabinet formation is only the beginning. The tougher task may be managing expectations as

0: and selfless service to the nation. As the nation honored its heroes, the ceremonies turned deeply emotional. Lieutenant Tiwari's mother broke down in tears while receiving the award on behalf of her son, while Sepoy Prabhakar's mother and wife struggled to hold back their emotions as they accepted the honor. You know, their tears spoke of an immeasurable loss, a family sacrifice, and the price paid by those who stand guard for the nation. Even in grief, they stood tall, carrying forward the legacy of courage left behind by their loved ones.
1: लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी ने 22 मई 2025 को गश्त के दौरान उनका एक अग्निवीर स्टीफन सुब्बा संतुलन बिगड़ने से नदी में जा गिरा। इस युवा अधिकारी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए तुरंत नदी में छलांग लगा दी और घायल होने के बावजूद अपने साथी को सुरक्षित किनारे तक धकेला, लेकिन तीव्र प्रवाह एवं गंभीर चोटों के कारण वो स्वयं को न बचा पाए। लेफ्टिनेंट शशांक तिवारी को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से अलंकृत किया जाता है।

सिपाही जंजाल प्रवीण प्रभाकर कश्मीर घाटी में चलाए गए एक तलाशी अभियान का हिस्सा थे। इसी बीच वहां छिपे आतंकियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए भागने का प्रयास किया। सिर पर गोली लगने के कारण गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो अंत तक लड़ते हुए अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया जाता है।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
5: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे
1: इंडिया इंक्स मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम्स चोज इंडिया इंक्स बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट
2: I'm delighted

0: All right, our big focus at 9 a.m., what began as whispers of dissent inside the Trinamool Congress is now beginning to resemble a test of strength between the party leadership, with Mamata Banerjee at the helm of affairs, and a growing rebel camp. You see, over the past 48 hours, NDTV has tracked a series of meetings involving dissident MPs. Sources say there was first a closed-door huddle at a discreet location in Delhi. That was followed by a meeting involving rebel MPs and BJP's Bhupendra Yadav. Sources also indicate that West Bengal Chief Minister Shuvendu Adhikari also engaged with members of the dissident group. As of now, rebel MPs, though, have no appointment with the Speaker. In fact, they may not meet him today. And there is another development worth watching, because Yusuf Pathan is expected to arrive in Delhi amid speculation that he could join the dissident camp. And at the centre of this rebellion is Kakoli Ghosh Dastidar, who claims that around 20 MPs want separate seating in Parliament and are prepared to work in conjunction with the central government. We've lined up some crucial political reactions you cannot ignore. Listen in.
1: 20 MP ka naam diya hai. Aapko malum hoga kis prakar se Maharashtra mein split hua tha Shiv Sena ka. To wahan to MPs ke naam aaye the na ki ye log alag ho rahe hain. To yahan par bhi to inko batana chahiye na ki wo 20 MP kaun se hain. Aur ye log itna hi usme hai. त्रिणमूल के ही सिंबल पे तो जीत के आए हैं ना, जाए लड़े बीजेपी से. इनको इतनी समस्या थी, हम हार गए तो इनको समस्या हो गई, तो जहाज छोड़ के भाग रहे हैं लोग. पहले क्यों नहीं बोला तुमने इलेक्शन से पहले? तब तो सब कुछ ठीक था. इसमें बीजेपी का खेल है. ईडी सीबीआई वाला तो केस नहीं है, लेकिन लोकल केस जरूर इनके ऊपर बनता है. पुलिस से इनको डराया धमकाया जा रहा है. कई लोगों के तो ऑफिस ऑफिस तोड़े गए हैं, वो तो हम लोगों ने देखा ही है.
2: तो सब तृणमूल का सिंबल में जीता हुआ है, पार्टी का एमपी है, तो उसका कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वर्कर है और वोटर्स है, सपोर्टर्स है, पब्लिक है, वो देख रहे हैं.
3: व्हाट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन टीएमसी, वी हैव बिटरली एक्सपीरियंसेस इन महाराष्ट्र, एंड विदाउट द सपोर्ट ऑफ समवन, हाउ वुड यू डेयर टू लीव द पार्टी एंड व्हाट आर यू गोइंग टू गेन आउट ऑफ इट? यू आर इलेक्टेड फ्रॉम वन पार्टी which is supposed to deliver justice to the common man, or just deliver some goods to the common man, service to the common man. And irrespective of, without, you are forgetting that, now they want to strangulate TMC, so that henceforth nobody can stand in front of
4: them. ये नोटंकी करने का बावजूद अगर ये लोग सीधे एनडीए में शामिल हो जाते तो अच्छा लगते, क्योंकि इतने दिनों तक, मतलब 4 मई तक बीजेपी पार्टी के खिलाफ जंग लड़ते हुए भी जब हारी इन लोगों ने, तब इन लोगों को एहसास हुई कि अभी बीजेपी के पाले में हमें जाना चाहिए. तो ये इधर उधर घुमा के बात ना करते हुए सीधे तौर पे बीजेपी पार्टी में शामिल होना इनके लिए वाकिफ होगी.
5: मोदी और शाह के जो बीजेपी, वो क्या करते हैं कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं. जो लोकतंत्र जहां है वहां जाके वो तानाशाही दिखाता है. हमने देखा है महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिवसेना को दो किया हुआ है. हमने देखा एनसीपी का विभाजन हो गया है, तो वही हो रहा है. टीएमसी का भी यही कर रहा है कि उनको एमपीस चाहिए, फिर उनको बिल्स पास करना है, विधेयक पास करना है पार्लियामेंट में, जो राज्यसभा है या लोकसभा, तो इसके लिए ये सब खेल खेल रहा है. और मैं आज बोल रही हूँ कि ये लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं. उनको एक डिक्टेटरशिप चाहिए इंडिया में, और हम लोग विरोध करेंगे.
6: देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, डूबते जहाज पर कौन बैठता? ये टीएमसी डूब चुका है, जनता खोज रही है कटमनी का पैसा. दो कोई साड़ी के नीचे घुस रहा है, कोई संदूक में घुस रहा है, कोई टमाटर से मार रहा है, किसी को पत्थर से रगेद रही है जनता, किसी पर अंडे फेंक रही है जनता. ये जनता खोज रही है जिसने शमशान से लेकर के घर तक सब जगह कटमनी लिया.
7: सवाल तो ये पैदा होता है कि असली टीएमसी अगर संख्या बल से देखा जाए तो विधायक भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, एमपी भी नहीं है ममता बनर्जी के पास, तो फिर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी क्या नकली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करके इंडिया अलायंस में बैठे थे? और बात तो यही है ना कि पुत्र मुंह में पार्टी गई। पहले पुत्र मुंह में जो हमने देखा है, कांग्रेस पार्टी बर्बाद हुई, डीएमके बर्बाद हुई, पुत्री मुंह में एनसीपी बर्बाद हुई, और आज टीएमसी भी भतीजे मुंह में बर्बाद हो रही है। ममता बनर्जी अनफॉर्चुनेटली भतीजे को ज्यादा प्राथमिकता देती है, तो विधायक भी और सांसद भी उनके साथ नहीं रहना चाहते। मतलब पहले जनता ने रिजेक्ट किया, फिर जनप्रतिनिधि ने।
0: Well, the political significance of the TMC rebellion extends well beyond West Bengal because it has the potential to alter the arithmetic as far as parliament is concerned. You see, as things stand at the moment, the NDA already enjoys a comfortable majority in the Lok Sabha with 292 MPs, comfortably above the halfway mark of 272. However, if the rebel camp's claim of support from around 20 TMC MPs materializes, the NDA's effective strength could rise to 312. That doesn't change who governs our country, but it also substantially increases the government's legislative cushion as far as the Lok Sabha is concerned and reduces its dependence on allies during politically sensitive moments especially. And the more interesting story you must note may lie in perception. A large-scale breakaway away from one of the country's biggest opposition parties would represent a significant political setback for Mamata Banerjee and could reshape the balance of power within the opposition ecosystem. In the Rajya Sabha though, the picture is a little more complex. The NDA remains short of the two-thirds mark, and even if unrest spreads into the TMC's 13-member upper house contingent, constitutional amendments would still require broader political support. Aishwarya Jain is tracking the latest for us as far as the state of play and the claim of numbers is concerned. He joins us with all the clarity we need this morning. Aishwarya, the rebel camp claims 20 MPs. The Mamata camp says that figure is closer to 12. At the moment, break down for us, strip away the rhetoric. Who is counting whom and where does the truth likely lie?
8: Well, the crisis in the Trinamool Congress has deepened over the last 48 hours because there are a series of meetings that have taken place in the national capital. One, of course, of the rebel MPs of the Trinamool Congress at the residence of Bhupendra Yadav, Biplab Dev and senior BJP leaders were among them, and the rebel TMC MPs joined. Later, we saw a meeting that took place at Shatabdi Roy's residence, and it was West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari who also met these rebel MPs. What has been claimed by these rebel MPs is that at least 20 of the MPs are in support of them, and they will be soon meeting the Lok Sabha Speaker. Altogether, a letter has been written, but the time has not been given for today. They may meet tomorrow to the Lok Sabha Speaker. Remember, there has been already a letter that was given earlier to change the seating arrangements as well with the fraction that sits together with the DMK Samajwadi Party and the India Alliance in the Lok Sabha as well. On the other side, it is one more Rajya Sabha MP from the Trinamool Congress who possibly may resign today as well later in the day. And it will be another Lok Sabha MP, Yusuf Pathan, would be arriving to the national capital and will be joining the bandwagon of the rebellion TMC MPs. So yes, it's a major blow for the TMC Supremo Mamata Banerjee, as she has already lost the control of the TMC legislative party back in West Bengal. And also now the rebellion MPs have altogether decided that they will part away from the Trinamool Congress. It is the Bharatiya Janata Party who had stated that because it's a sinking ship of the Trinamool Congress under the leadership of Mamata Banerjee, and these leaders know that who they can support and who the real development can be given to the state of West Bengal under the leadership of Prime Minister Narendra Modi and Bharatiya Janata Party-led government, and therefore, perhaps they have decided to part ways from the TMC.

0: supporters argued that the broader political influence of the BJP continues to expand. Over the past decade, the BJP has also strengthened its presence in regions where it once had limited influence. The party's growth in states such as West Bengal is frequently cited as evidence of organizational expansion and sustained political campaigning. Foreign policy and national security also became defining themes of the Modi years. After the 2016 Uri attack, India carried out surgical strikes across the line of control. Following the 2019 Pulwama attack, India conducted airstrikes on Balakot. The government argued these actions reflected a more assertive security doctrine. Supporters described it as a shift from strategic restraint to proactive response.
1: नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया, मैंने कहा कि आपका फोन था, तीन चार बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा, मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। ये मैंने अमेरिका के उपराष्ट्रपति को कहा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे, ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। ये 9 तारीख रात की बात है और 9 रात में और 10 सुबह हमने पाकिस्तान को सैन्य शक्ति को तहस नहस कर दिया था।
2: श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी।
0: 12 years after 2014, India has undergone significant political, economic and technological change. The roads are different. The digital ecosystem is different. India's global profile is different. Challenges remain, debates continue and political battles persist. But one thing is clear. The story that began in 2014 is still being written. Bureau Report, NDTV.
3: भारत माता की।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: सबका राजा आर्थर मसाला।
4: भरोसा ऑन मोदी जी, एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैनेजमेंट एंड अश्योरेंस ऑफ करेज गिवन बाय अमित शाह जी टू ऑल द पीपल, वी आर विथ यू।
5: इलीगल माइग्रेंट, ये बांग्लादेश से घुसपैठिया के लिए ये दोनों पार्टी पटिबद्ध है, देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार।
6: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ, भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड।
7: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
8: ओडिशा का है, रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की।
9: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
10: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
11: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.
12: Across the country, he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network.
13: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
14: द सिचुएशन इन द स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ राइट नाउ एंड ईरान, द लास्ट 48 आवर्स हैव बीन टेंस। इज देयर अ सेंस दैट स्ट्राइक्स आर इमिनेंट?
15: ईरान कैन नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन। And so the issues of enrichment and the highly enriched uranium have to be confronted. The straits cannot continue to be closed.
14: The import of American oil is important for India, particularly because of the situation.
15: India wants to diversify its energy. We want to diversify the countries we export to.
14: There is also an issue of visas for Indians. They have to come back to India for green cards now. Why has America taken this decision?
15: Well, it's not about India. It's about the whole world. Anytime you reform a system, there's going to be some disruptions. There's going to be some hiccups.
14: How did the meeting with the Prime Minister go? What did you discuss?
16: Relationship between the President, President Trump, and Prime Minister Modi. I think that always makes it easier to have these meetings because of the personal affinity they have to one another.
14: Thank you very much for
15: thank you.
14: Thank you.
15: Thank you very much.

0: करेंगे।
1: अरे भैया इसलिए उनका जवाब देता था। ठीक है, आपने पूछा कि मैं कब स्पीकर से मिला, मैं स्पीकर के साथ मैं क्यों मिलूं, मैं तो राज्यसभा का मेंबर था, मैंने हमारे आदरणीय चेयरमैन जी जो हैं उनसे मैंने पिछले दिन यस्टरडे मैंने उनसे मिला और मैंने त्याग पत्र दे दिया मैं स्पीकर के साथ।
2: क्रैकिंग पॉइंट कब था जब आपको लगा कि नाउ यू शुड रिजाइन, व्हाट वाज दैट क्रैकिंग पॉइंट?
1: आरजी कार्ड
2: के बाद आपको लगा कि अब नहीं हो पाएगा?
1: नहीं नहीं, इसको जनता इसको हटा देगा।
3: सुखेंदु दा, ये बताइए कि आपने इस्तीफा दे दिया पार्टी से भी और राज्यसभा की सदस्यता से भी, तो अब आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होगा आपकी सीट पे, तो वहाँ से आप चुनाव मैदान में?
1: ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है।
3: जी जी,
1: मेरे पास अभी सवाल है कि मैंने 59 साल राजनीति किया।
3: जी जी,
1: और सब जगह से मैंने त्याग इस्तीफा दे दिया, मैं अगले दिन राजनीति करूँगा कि नहीं करूँगा, ये सवाल उभर के आते हैं पहले।
3: जी जी,
1: अगर मैं राजनीति करूँगा तब उस समय मैं सोचूंगा कि हिंदुस्तान में तो बहुत सारे पार्टी है, कोई अगर पार्टी ज्वाइन करना है तो उस समय
2: सुखेंदु जी कई सारे और MPs हैं जो अभी TMC ज्वाइन करना चाहते हैं।
1: मैं बंगाल की एक सचेतन नागरिक के नाते मैं सोचता हूं कि इन लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो जो वादा किया था उसका काम शुरू हो चुका।
2: सुखेंदु जी कई सारे और TMC MPs हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं।
1: आप लोग तय कर लीजिए कौन पूछेगा।
4: सर 15 साल आप पार्टी में रहे, क्या कभी आपने भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई सवाल उठाए?
1: उठाए बहुत दफे, उठाए
5: नहीं, मना कर रहे हैं ना,
2: करेंगे ना, एक एक
5: माइक रखेंगे।
1: आम जनता का राय अगर हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो आम जनता का राय तो माननी ही पड़ेगा। वो जो खफा है आम जनता, इसके लिए उन्होंने बार बार सिग्नल दिया कि आपने आपको तो हमारे जो करेक्टिव मेजर लेना चाहिए था, हमने नहीं लिया, उनका बात मैंने नहीं सुना।
4: क्या ममता बनर्जी ने आप लोगों से मिलने की कोशिश की थी?
1: किसी ने कभी हमसे मिले नहीं मिला। हम लोग जो मीटिंग में जाते थे वहाँ से कुछ निर्देशिका दिया जाता था, कोई चर्चा वगैरह किसी विषय में कभी नहीं हुआ। मैंने बोल दिया ना,
3: ठीक है,
1: मैंने बोला।
6: सर सुखेंदु कहना है कि वो
2: ठीक है। अब एक एक करके
1: कुछ बोले। आप काकोली घोष के बारे में मुझे क्यों जानना था?
6: हाँ,
1: आप काकोली जी से, आप काकोली जी से पूछिए।
7: All right, so those are the reactions coming in from both TMC rebel leaders and of course leaders who are supporting Mamata Banerjee as well. Earlier we heard Kalyan Banerjee, they're hitting out at the rebel MPs. We have more breaking updates coming in. TMC rebellion could boost NDA numbers in Lok Sabha. In fact, NDA would edge closer to crucial two-third majority mark. Government eyeing women's quota, one nation, one poll bill. Sources saying talks underway to secure support from DMK. Modi government prepares for crucial monsoon session. So therefore, TMC rebellion to boost NDA strength. Remember, 20 TMC MPs are expected to support the NDA. That's the information we have. And in regard to that, there are meetings taking place as well. Let's go straight across to Manogya. Manogya, as far as these rebel MPs are concerned, of course, this is a huge setback for Mamata Banerjee. But the fact remains that if the 20 MPs really join hands with the NDA, support the NDA, their numbers will only strengthen in Lok Sabha NDAs.
8: Yes, and absolutely. When we talk, we also understand that I'm here at Kalyan Banerjee's residence. We were just translating on what he was speaking in Bangla to the people and address the people of West Bengal, primarily their own constituency and where Trinamool Congress hails from. But we need to understand that it was formed in on 1st January 1998. And since then, this is perhaps one of the biggest exodus that the party is witnessing under the leadership of the chairperson, Mamata Banerjee, and the former chief minister of West Bengal. There are categorical statements coming in, especially from Kalyan Banerjee. And he spoke today that the party has appointed him as the chief whip of the party in and on the floor of the house in Lok Sabha. And the letter has been shared with the speaker on behalf of chairperson Mamata Banerjee. But when it comes to the exodus or the rebel that we're terming it as, on the number of MPs that have spoken against the party and have signed and are ready to move ahead in principle and to avoid the law of defection to most of them, this is of course an interesting time to witness, where more than almost 20 MPs

0: From his first swearing-in in the year 2014 to a third straight term in 2024, Prime Minister Narendra Modi has completed 12 years in office, becoming one of India's longest-serving leaders. The numbers are significant. 12 years as Prime Minister, three consecutive terms, over 18 years in elected executive office, and more than 4,400 days at the helm of the country. The period has seen landmark projects including the new Parliament building, Kartavya Path, Vande Bharat trains, INS Vikrant, the Kashmir Rail Link, Noida International Airport, Namo Bharat, RRTS, and the Ganga Expressway. As the government marked the milestone, NDA allies praise Narendra Modi's leadership, while the Congress attacked the government's record, calling it a story of broken promises and missed opportunities. NDTV spoke exclusively to Union Minister Kiran Rijiju.
1: आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हो गए. दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
2: बहुत अंतर है. जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया. जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था. और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा. लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था. जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा. तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
1: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
2: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. वो 5 साल का होता है. 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था. तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा. तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा. हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा. कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन बोल सकते हैं, विकसित राष्ट्र बने. तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था.
1: आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे. ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना है.
2: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं. किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा. हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है. तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा. तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं. तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है. मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं.
0: The center's decision to slash subsidized LPG refills for Ujjwala beneficiaries from 9 to 4 a year has sparked a political storm. The Congress has termed the move a betrayal of the poor, alleging that rising costs will push vulnerable families back to traditional cooking fuels. The Samajwadi Party too has hit out, questioning how four cylinders can meet a household's annual needs. The government, however, has defended the revision, saying the quota has been aligned with actual consumption patterns, while the subsidy framework and direct benefit transfer mechanism remain unchanged. The centre also points to over 52,000 crore rupees in LPG support since the year 2022, citing rising global prices and higher import costs behind this decision.
3: This is another way of cheating the people, and those big amount

0: treatment, and the family members were also present. Minister Lokesh, along with other ministers, they wanted to meet and hold a discussion with all those family members of injured patient who are undergoing treatment. While this whole discussion was going on, while minister was interacting with the family members, a left leader, CPM, as well as C2 leaders, they reached there and they started asking increase in compensation. Remember, the government of Andhra Pradesh has announced 25 lakh to those who lost life in this tragic incident, 10 lakh rupees for those who are undergoing treatment. But left leaders as well as C2 leaders, they demanded that government of Andhra Pradesh should enhance the compensation and they should increase it to 1 crore. And that's what the demand. During this demand, Nara Lokesh and the left leaders, as well as a few of the supporters of left party, they started heated exchange, I would say. And Nara Lokesh, the minister, said that if they are raising their voice, if they are there to create trouble, then government is very much ready to have a firm stand on it. He later on assured all those family members as well as leaders that the government of Andhra Pradesh will take care of all those injured as well as all those who have lost their life. Their family member will be taken care of. But yes, the left leader remained very firm that they want 1 crore compensation from the state government.
1: All right, thanks for joining me there, Ashish. We'll keep coming back to you for more about that heated exchange between the minister and the left over compensation. From his first swearing-in in 2014 to a third straight term in 2024, Prime Minister Narendra Modi has completed 12 years in office, becoming one of India's longest-serving leaders. The numbers are significant: 12 years as Prime Minister, 3 consecutive terms, over 18 years in elected executive office, and more than 4,400 days at the helm of the country. The period has seen landmark projects including the new Parliament building, Kartavya Path, Vande Bharat trains, INS Vikrant, the Kashmir Rail Link, Noida International Airport, Namo Bharat, RRTS and the Ganga Expressway. Now, as the government marked the milestone, NDA allies praised Modi's leadership, while the Congress has attacked the government's record, calling it a story of broken promises and missed opportunities. NDTV spoke exclusively to Union Minister Kiran Rijiju.
2: आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के दोनों के कार्यकाल में आप प्रधानमंत्री जी सबसे ज़्यादा लंबे समय तक सर्व करने वाले प्रधानमंत्री हो गए. दोनों के कार्यकाल में बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
3: बहुत अंतर है. जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया. जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था. और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा. लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था. जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा. तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
2: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
3: नहीं नहीं, ऐसा नहीं. वो 5 साल का होता है. 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था. तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा. तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा. हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा. कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने ओर से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन बोल सकते हैं, विकसित राष्ट्र बने. तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया क्योंकि लक्ष्य नहीं था.
2: आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे. ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना है.
3: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए. मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा. हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो

0: या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्म इसलिए स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: When others are warming up, I'm raring to go. The stories that matter, the stories

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।

0: ने जिन्होंने बोला है आपको बिल्कुल सही बात बोला है। मेरे मन में भी यही ये भी एक कारण है कि हम लोग है पार्टी में कमेटी में, लेकिन हम लोग फालतू आदमी हैं, हमारा बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं।
1: सत्ता पे रहे सब ठीक ठाक थी, सत्ता से बाहर आने से ही सारे विवाद खड़ा हो गए। और ये अभी नेत्री ममता बनर्जी उनकी भतीजे, उनका भी हालात देखियो, दौड़ते दौड़ते दिल्ली आ पहुँचे, ये तो अस्थिर स्थिति है।
2: क्या इस टीएमसी के इस झगड़े से इस फूट से कांग्रेस के लिए एक मौका आप देख रहे हैं, क्या आपको एक अपॉर्चुनिटी?
1: मैं कहा मौका की तलाश में नहीं है, लेकिन बात यह है कि पिछले कुछ सालों से कांग्रेस पार्टी की जितने जमीन, ये जमीन हम खोए थे और टीएमसी पार्टी सारे जमीन कब्जा कर लिए थे। तो टीएमसी पार्टी की जमीन जब ढीली होते जाएंगे तो हमारे लिए और सारे नया नया मतलब मौका आने की उम्मीद है।
3: जो महाराष्ट्र में हुआ वही तृणमूल के बारे में पश्चिम बंगाल में अमित शाह करने जा रहे हैं, जो उनकी हॉबी है किसी भी राज्य को अस्थिर रखना। और मैं सब कुछ खरीद सकता हूँ सत्ता के बल पर, ये दिखाना ये उनकी हॉबी है।
4: देखिए इसके लिए टीएमसी और उनका नेतृत्व स्वयं दोषी है। और अब टीएमसी का भविष्य तो रहा नहीं, 2026 के चुनाव में जनता ने यह तय कर दिया है। और जिन्होंने पश्चिम बंगाल में डेमोक्रेसी ख़त्म की तो उनकी पार्टी में डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, तो डिक्टेटरशिप में पूरी पार्टी चलाई है। और ये सारा इशू शुरुआत हुआ है जैसे ही चुनाव हारे, उसके बाद भी अभिषेक बनर्जी का रवैये में कोई परिवर्तन नहीं था, सारे विधायकों के जो है जाली दस्तखत करके स्पीकर तक भेज दिया गया लीडर ऑफ ओपोजिशन चुनने के लिए फर्जी दस्तावेज के माध्यम से।
5: Moving on from his first swearing in 2014 to a third straight term in 2024, Prime Minister Narendra Modi has completed 12 years in office, becoming one of India's longest serving leaders. The numbers are significant. 12 years as Prime Minister, 3 consecutive terms, over 18 years in elected executive office, and more than 4,400 days at the helm of the country. The period has seen landmark projects including the new Parliament building, Kartavya Path, Vande Bharat trains, INS Vikrant, the Kashmir Rail Link, Noida International Airport, Namo Bharat RRTS, and the Ganga Expressway. As the government marked the milestone, NDA allies praised Modi's leadership, while the Congress attacked government's record, calling it a story of broken promises and missed opportunities. Here are some reactions.
6: Right now, I'm joined by MOS to PMO Dr. Jitendra Singh. We have seen that how purple revolution has really transformed this Bhadarwa from the maize fields to lavender fields. So how you see this change, that history that is being scripted?
7: I think, Pradeep, none else but you would be the better judge because you've been witnessing this area, you've been covering this area for more than 2 decades. And you would recall that just about a decade back, this either had maize fields or nothing at all. And in fact, when we started, we had some difficulty because the people were not used to it. The local farmers were not ready to part with their land to cultivate this. So we just got some leftover land as an experiment. And we assured them that if we don't succeed, we'll give it back to you. But once they started making a huge profit, made a fortune overnight, they asked us to allow them to cultivate in the entire field, and gradually the entire village came forward, and now it's spread all over Uttarakhand, Himachal, Arunachal. And the farmers will themselves tell you, those who are making just for 20,000 a month are now making more than 1 lakh. So we have also in a way tried to vindicate the concept that startup does not necessarily mean IT. Our exclusive domain is agriculture. A and B, startup also does not necessarily mean you have to be a very lofty scientist or a PhD. Many of our boys and girls are not even graduates. And this has also proved to be a lucrative extra business for housewives, for women self-help groups, and also I think, an asset for tourism.
6: Prime Minister often keeps on talking about from local to global. And you think that the Bhadra is setting an example in this regard so far as the Levanter fields are concerned?
7: I think the first major boost that we received was when Honorable Prime Minister Modi ji mentioned

0: बेसिक अंतर, मूलभूत अंतर क्या देखते हैं?
1: बहुत अंतर है। जब देश को आज़ादी प्राप्त हुई उस समय 5 ईयर प्लानिंग करके देश के लिए काम करना शुरू किया। जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने से लेकर के आगे जितने भी कांग्रेस और बाकी जितने भी सरकारें आए हैं, गैर सरकारी कांग्रेस भी आए हैं, उसमें 5 ईयर प्लानिंग को तवज्जो दिया गया था। और फिर देश अपना आप गति जो है जैसे भी हो चलते रहा। लक्ष्य नहीं था, टारगेट नहीं था, ऑब्जेक्टिव नहीं था। जब आप कहीं भी जाता है जर्नी में भी तो लक्ष्य तो होना पड़ेगा, डेस्टिनेशन होना पड़ेगा। तो मोदी जी ने जो 2014 के बाद,
0: लेकिन योजना आयोग बना तो योजना आयोग तो लक्ष्य ही बनाता था ना?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो 5 साल का होता है, 5 ईयर प्लानिंग ही हमारा सिस्टम था। तो मोदी जी ने उसको बदलते हुए 2047 में विकसित भारत बनना है उन्होंने टारगेट लक्ष्य रखा। तो आप सोचिए कि इतने सालों तक भारत गरीब क्यों बना रहा? हमारे साथ में काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं सबने आज़ादी प्राप्त किया और सब आगे बढ़ा। कई राष्ट्र बिल्कुल वो अपने और से संपन्न कह सकते हैं या विकसित बन सक बोल सकते विकसित राष्ट्र बने। तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से भी ओवरऑल जीडीपी जो है विकसित राष्ट्र नहीं बन पाया, क्योंकि लक्ष्य नहीं था।
0: तो आप ये कह रहे हैं कि 5 साल की सरकार होती थी, 5 साल की योजना बना ली जाती थी, उसके बाद अगला देखेंगे, ये चिंता नहीं थी कि 20 साल बाद देश कहाँ होना चाहिए।
1: लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं, किसी भी राष्ट्र को आगे बढ़ने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चाहिए। मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का लक्ष्य रखा। हर काम मोदी जी का, चाहे वो जनधन हो, चाहे वो जल जीवन मिशन का हो, चाहे डिजिटल इंडिया का कैंपेन हो, चाहे फिट इंडिया खेलो इंडिया हो, हर चीज़ जितना भी सरकारी कार्यक्रम जो जन अभियान चलाया वो विकसित भारत बनाने के लिए ही चलाया गया है। तो हमारा लक्ष्य है कि जब भारत 100 साल पूरा करेगा आज़ादी का तो विकसित राष्ट्र बन जाएगा। तो अगर टारगेट उस समय रखते हैं नेहरू जी के ज़माने में या कांग्रेस के ज़माने में, तो जब टारगेट रखता था आदमी उसको प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तो विज़न, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक्चुअल जो विज़न है, सपना है, वो न्यू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। मैं उनके साथ शुरू से काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे मालूम है कितना लगन और कितना अच्छा सोच के साथ मोदी जी ये लक्ष्य रखा है और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं।
2: Now the center's decision to slash subsidized LPG refills for the Ujjwala beneficiaries from 9 cylinders to 4 in a year has sparked a political storm. The Congress has termed the move a betrayal of the poor, alleging that rising costs will push vulnerable families back to traditional cooking fuels. Samajwadi Party too has hit out at the government, questioning how 4 cylinders can meet a household's annual needs. The government, however, has defended this revision, saying that the quota has been aligned with actual consumption patterns, while the subsidy framework and direct benefit transfer mechanism remain unchanged. The centre also points to over 52,000 crore in LPG support since 2022, citing the rising global prices and higher import costs behind the decision. Now, Aditya Raj Kaul spoke with the Petroleum Minister Hardeep Singh Puri on how India is managing the fuel prices and the options ahead. Listen in.
3: Between February 22, when was the last time the prices were increased, there was never any increase of price till February 28th of 2026, when the West Asia crisis started. In other words, 4 years, people said, चुनाव आने होते हैं तो आप लोग दाम कम कर देते हो उसके बाद बढ़ाए। अरे नहीं भाई, February 22 के बाद we had general elections in 24, we had elections to state governments in महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, what have you, prices were never increased. In fact, prices came down. Mm-hmm. What happened on February 28th, the facts are that the 90% of the crude imported by India used to come through the

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: much for spending your time, for trusting NDTV.
1: India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
2: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है.
1: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
3: Bharosa on Modi ji, an extraordinary management and assurance of courage given by Amit Shah ji to all the people. We are with you.
4: Illegal migrant, ye Bangladesh se ghuspitiya ke liye ye dono party pratibad hai. देश की जनता के लिए नहीं, इसलिए देश के जनता ने उसको नाकार.
5: भय से भरोसा इज द ट्रांजिशन विच इज हैपनिंग नाउ. भय से मुक्ति इज द विक्ट्री बीइंग डिपिक्टेड.
6: अब आपकी सरकार ओडिशा और बंगाल दोनों में है, तो रसगुल्ला किसका है? ओडिशा का या बंगाल का?
7: ओडिशा का है. रसगुल्ला है, रसगुल्ला दोनों की.
8: आई थिंक इट विल बी गुड टू ब्रिंग बैक the confidence of industry.
9: The people of Kerala understood the real politics of CPM and left the Democratic Front.
10: And that kind of victory is truly astonishing. And I do believe it marks a return of the Congress with the kind of mandate to bring about radical transformation.

0: The funeral had drawn thousands of mourners, many chanting slogans against the Pakistani military and demanding accountability. The latest bloodshed comes after weeks of unrest in POK, where protesters have been rallying over economic hardships and political representation. International concern is also growing. More than 30 UK lawmakers have reportedly raised alarm over allegations of arrests, communication blackouts, and escalating tensions in the region. Members of the Kashmiri diaspora staged a protest right outside the Pakistani consulate in Bradford, UK. Expressing concerns over human rights violations in POK. POK has been rocked by violence in the recent past. Late last year, at least 12 civilians were killed in protests over denial of fundamental rights in the region. POK is witnessing one of the most volatile periods in recent years, mostly due to Pakistan government's brutal crackdown on protesters, who are only raising their voice for basic rights. Bureau report for NDTV World.
1: All right, joining us to discuss more about the protests that have engulfed at least the major chunk of Pakistan-occupied Kashmir is Shabir Chaudhry, author and political analyst, joining us from London. Mr. Chaudhry, thank you very much for joining us. How do you make sense of these massive protests that are happening? On one hand, you know, the Pakistani government was holding negotiations with them last year, assured them that their demands will be met. And now they have been described as terror organization. I mean, these are civilians that we are talking about who would have never seen an AK-47 or a grenade. And what is the main intent of the Pakistan army, the Pakistan government, and the deep state behind this entire propaganda?
2: Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Sunne walon ko meri taraf se assalamu alaikum and adab. Sabse pehle to ye hai ki jo aapne ek lafz kaha hai ki security forces, kisko security provide kar rahe? They are there to kill people, to injure them, to harass them, to intimidate them. तो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए नहीं ये आए. ये पहला मौका नहीं है कि आज़ाद कश्मीर पर हमला हुआ है. इससे पहले 22 अक्टूबर को हुआ था. उस वक्त आज़ाद कश्मीर तो नहीं था, जम्मू कश्मीर था. बाई वायलेटिंग द स्टेट स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, तो पाकिस्तान ने उस वक्त अटैक किया था. दैट वॉज द फर्स्ट अटैक, जिसकी वजह से हमारा कश्मीर तकसीम हो गया. उसके बाद 55 में दोबारा हमला हुआ. फर्स्ट पाकिस्तानी जो है ना सरेंडर, वो कब हुआ था? 1955 में. मेजर उस्मानी थे जो बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल बने. उसके बाद जब ईस्ट पाकिस्तान में इन्होंने हमला किया तो ही वॉज इंचार्ज ऑफ द मुक्ति वाणी. तो फर्स्ट सरेंडर टुक प्लेस इन रावला कोट. बाद में उन लोगों ने मिन्नतें करके लोगों को रिहा कराया, लेकिन बाद में उन लोगों को सजा दी कि आपने हमारे लोगों को सरेंडर क्यों कराया. सो दिस इज अ लॉन्ग हिस्ट्री. सो दिस टाइम दे हैव अटैक्ड अस. दे आर नॉट हियर टू प्रोवाइड सिक्योरिटी. सिक्योरिटी देने के लिए नहीं आए वो. दे आर हियर टू मीन उसको इंटिमिडेट करने के लिए, डराने के लिए, मारने के लिए आए हैं. और अभी बात सुन ले, अभी अपने बातें कही हैं. यस, इस वक्त रिपोर्ट्स नहीं है क्योंकि इंटरनेट नहीं है, लेकिन हमारे पास रिपोर्ट्स आती हैं. कुछ कन्फर्म्ड होती हैं, कुछ कन्फर्म्ड नहीं होती. ठीक है, सिर्फ रावला कोर्ट में कहा जा रहा है कि 50 से 60 लोग मारे जा चुके हैं. और एक रिपोर्ट ये भी कह रही थी कि 300 मारे जा चुके हैं, जिसे इसने कहा कि लाशें बिखरी हुई हैं. और एक ने ये भी कहा है कि 600 बंदे मारे जा चुके हैं और लाशें उठाने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही. मैं साथ ये भी कहूँगा कि दीज आर अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स. लेकिन एक बात ये भी है कि लोगों पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, हर जगह पर हो रहा है. जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ पर भी. अच्छा, एक बात और सुन लें. तत्तापानी जो है हमारे एक जगह जी, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर को कहा गया कि आप इन पर गोली चलाएं. इसने कहा जो आए थे पाकिस्तान से, ये हमें बचाने के लिए नहीं आए थे. बचा किस से रहे थे? इंडिया ने हमला किया हुआ था. किसने हमला किया हुआ था? ये मारने के लिए आए थे. तो उन्होंने कहा जी आप गोली चला क्यों नहीं चलाते इन पर? तो सब इंस्पेक्टर ने कहा जनाब हम इनको नहीं मार सकते. आंसू गैस जिनमें फेंक सकते हैं, लाठी चार्ज कर सकते हैं, गोलियां नहीं मारते आपने लोगों पर. उसने कहा नहीं नहीं, मैं हुक्म करता हूँ कोई आप गोली चलाएं. सब इंस्पेक्टर ने कहा जी ये आपका जो तरीकाकार है लोगों को गोलियां मारना. हाँ, हम लोग अपने लोगों को गोली नहीं मारते. नतीजे के तौर पर उस आदमी को गोली मार दी गई. सब इंस्पेक्टर को शहीद कर दिया गया. दिस इज सिक्योरिटी दे आर प्रोवाइडिंग, सो डोंट प्लीज यूज सिक्योरिटी फोर्सेज आर देयर.
1: लेकिन आप मुझे एक चीज बताएं शबीर चौधरी साहब, क्या वहां पर पूरी तरीके से एक मिलिट्री गैरिसन बना दिया गया है? क्योंकि जिस तरीके के वीडियो वहां से आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की मिलिट्री का तशद्दुद वहां पर लोगों के साथ हो रहा है, जो शाहनवाज हो या उमर हो या बाकी सारे लोग अवामी कमेटी के लोग हैं, वो क्या उनको

0: गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे की आपको क्या लगता है कि सरकार की और आर्मी की वहां पर मंशा क्या है?
1: बात देखिए, आर्मी की तो मंशा यही है, मुझे ये नज़र आता है कि ये जिस तरीके से इंडिया ने 2019 में इसको अपना हिस्सा बना दिया था, यूनियन टेरेटरी डिक्लेयर कर दिया था, तो इसका पार्ट टू जो है ना अभी आ रहा है, नज़र ये आ रहा है कि पाकिस्तान वाले भी करेंगे इमरजेंसी, मोस्ट लाइकली जल्दी इमरजेंसी हो जाएगी इम्पोज कर देंगे, उसके बाद हो सकता है कि इसको यूनी फेडरल एरिया डिक्लेयर कर दें, ये नज़र आता है मुझे। ठीक है, जहाँ तक लोगों का तलक है, यानी ये जो लीडरशिप है दे आर इन सेफ प्लेस, सिवाय एक दो के जो पकड़े गए हैं। ठीक है, मैं ये आपको ये भी बता दूं कि पलंदरी में कुछ लोग हमारे पकड़े गए थे, और जब वो उनको लेकर जा रहे थे तो पलंदरी के लोगों ने घेरा डाला और उनको ये कहा कि ये जो उनके थे 15-20 लोग थे जो पकड़ कर लेकर जा रहे थे विद देयर गन्स, उन्होंने कहा कि सरेंडर अदरवाइज विल किल यू। तो अगेन जो उधर से फोर्सेज आई थी दे सरेंडर्ड, दे हैव अ हैबिट ऑफ सरेंडरिंग, है ना, तो मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो उन्होंने सरेंडर किया, उन्होंने फिर उन लोगों को छुड़ाया, अपने लोगों को छुड़ाया, उन लोगों को कैद कर लिया गया। अब पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ये टेररिस्ट ने, इन्होंने हमारे लोगों को यरगमाल बना लिया और उनको क्या कहते हैं अबडक्ट कर लिया, किडनैप कर लिया हमारे लोगों को। तो ये बातें चल रही हैं और हर जगह पर मारदाट जारी है।
0: लेकिन मुझे एक चीज़ बताएं शब्बीर, एक बात वो मैंने आपको एक चीज़ इसमें जाहिर तौर पे सामने आ रही है कि आसिम मुनीर जो पाकिस्तान आर्मी चीफ हैं, आपने आपको शहनशाह बना दिया वहाँ पे, वो आसिम मुनीर पीस की बात करते हैं ईरान और अमरीका के दरमियान, कहते हैं हम मीडिएट करेंगे, हम पीस लाएंगे, लेकिन वही आसिम मुनीर, वही पाकिस्तान आर्मी, वही ISI लोगों को मार रही है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में पूरी तरीके से। वहाँ पर हर जगह से जो वीडियोज़ आ रहे हैं गोलियाँ चलने के, और वहाँ पर जो प्रोटेस्टर्स भी हैं पाकिस्तान आर्मी की जो यूनिफॉर्म है, उनके जो जूते हैं, ड्रेस हैं, उनको जो है प्रोटेस्टर्स लकड़ी पे घुमा रहे हैं हर जगह, तो कैसा आक्रोश है और ओवरऑल जो हिपोक्रेसी है क्या वो सामने नहीं आ रही पाकिस्तान आर्मी की?
1: देखिए जी, एक बात मैं आपको वेरी क्लियरली कह दूँ कि मैं तो उन लोगों में से हूँ जो 30 और ईयर्स पहले कहना शुरू किया था कि पाकिस्तान हमारे साथ यह गलत कर रहा है। ठीक है, उसको मुझे भी कहा गया था जी इंडिया का एजेंट है, ये गद्दार है, एंटी जहाद है, एंटी पाकिस्तान है, सो एंड सो फोर्थ है। अब तो ये कह रहे हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि आप लोग ठीक कहते हैं, हम लोग ठीक कहते थे, पाकिस्तान का असली चेहरा हमें नज़र आ गया है। और ये जो है ना बेसिकली उन्होंने कहा कि ये हमें तो नज़र आता है कि इतना गाजा में नहीं हुआ जो हमारे साथ हो रहा है, एक आदमी ने ये कहा है। ठीक है, देखिए बात यह है कि ये पीस किसी और जगह कराना चाहते हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि पीस इन करा सकेंगे नहीं करा सकेंगे, लेकिन जिसके घर में आग लगी हो अपने घर में, तो वो मसलन फ़र्ज़ किया कि इंडिया में कोई गड़बड़ हो रही है तो वो अमर वाम यह करने के लिए जाएगा, जब बलूचिस्तान में आग लगी हो, KPK में आग लगी हो, बलूचिस्तान जो उनके हाथ में नहीं है, PTI उनके हाथ में नहीं है, जो जिसको आज़ाद कश्मीर कहा जाता था हम तो उसको POK कहते हैं, POK उनके उनके हाथ में नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान पर वहाँ पर उन्होंने कब्जा किया हुआ है, तो वो क्या जाकर आपके बिहार में या बंगाल में जाकर अमर प्रमोट करेंगे? आंसर इज़ नो, दे डोंट बिलीव इन दैट। अमन जो है ना उनको सूट नहीं करता, ये याद रखें, अमन जो है ना पाकिस्तानी आर केपेबल ऑफ फाइटिंग वॉर्स, वो दे नो हाउ टू सबड्यू पीपल, लेकिन अमन जो है ना उनको सूट नहीं करता, किसी न किसी बहाने देखें किसी न किसी जगह कोई ना कोई गड़बड़ रहती है पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान। आखिर क्यों वो उनके अपने लोग हैं, उनको क्यों गोलियाँ मार रही हैं, वजह बताए ना। मैं कल भी मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं पाकिस्तानी था इंटरव्यू करने वाला, मैंने कहा भी ऑल वी आर आस्किंग इज राइट टू लाइफ, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं दे फ्लो फ्रॉम दिस राइट, राइट टू लाइफ जो होता है ये ज़रूरी है, फंडामेंटल है, तो हमें हम कहते हैं कि हमें ज़िंदा रहने का हक दें, हमें इंसान समझें, चलो जी आप हमें अपने बराबर नहीं समझते लेकिन इंसान तो समझें ना, हमारे हकूक दें, और फिर यह है कि हमें आपने आपको लूट मार करने का शौक है लूट मार करें, लेकिन जो हमारे कुछ मतलब बिजली की मदद में देख लें, वो कह रहे थे जी हम आपको खिलाते हैं, मैंने कहा नो नो नो हम आपको खिलाते हैं, यानी आप हमारा खाते हैं, मैंने कहा कि बिजली की मदद में, सिर्फ बिजली की मदद में, हाइड्रो पावर में मदद में पाकिस्तान एनुअली एक साल में 1.3 बिलियन ना सॉरी ट्रिलियन हमारा लेकर जाता है, कोई आदमी चाहे तो साफ करके देख ले। मैं कहता हूँ कि हमारी ये जरूरत है 3 मेगावाट है, 350 मेगावाट है, 350 मेगावाट हमारे वाले कहने तक हमें बिजली मिले, हमें बिजली भी नहीं मिलती सही तरीके से। ठीक है, प्रोड्यूस हम करते हैं 3500 मेगावाट, हम कहते हैं कि 350 हमें दे दें, बाकी अगर आपको लूटने का शौक है लूट कर ले जाएं, चोरी कर लें।
0: नहीं नहीं बिल्कुल, तो अच्छी बात है, सवाल है, बहुत ही लेजिटिमेट सवाल है, चाहे वो बिजली का हो, नेचुरल रिसोर्सेज का हो, नौकरियों का हो, चाहे वो पॉलिटिकल या फंड फंडामेंटल राइट्स का हो या फिर राशन का हो, ये सब जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट मिलता है जो पीओके के लोग हैं वहाँ पर। लेकिन आखिरी सवाल आपसे, पाकिस्तान की जो मीडिया है वो पूरी तरीके से चुप क्यों? आप देख रहे हैं जितने भी वहाँ पर टेलीविजन चैनल हैं या अखबार हैं, कोई भी इस प्रोटेस्ट को पूरी तरीके से कवर नहीं कर रहा। इंटरनेशनल मीडिया पूरी तरीके से चुप है। क्या पाकिस्तान आर्मी ने पूरी तरीके से एक जो है बैन लगा दिया है वहाँ पर, मीडिया ट्रैवल नहीं कर सकती, या फिर मीडिया को एक संदेश दिया गया है कि आप कवर ना करें?
1: यार ये आपको थोड़ी सी रानगी भी हो रही है, आप कहते हैं मीडिया चुप है, वो हमारे खिलाफ झूठ बोल रहा है, जो चुप नहीं है, गलत में कर रहा है। वो कह रहे हैं कि ये इंडिया के एजेंट हैं, शौकत नवाज मीर का, वो भी इंडिया का एजेंट है, हमारे पास सबूत आ गए। कहाँ सबूत हैं? यानी मीडिया की यह हालत है कि जब बलूचिस्तान के लोग आए थे 1000 किलोमीटर पैदल चल कर आए थे सर्दियों में, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए थे, तो मीडिया उनके करीब से गुजर जाता था लेकिन फोटो नहीं बनाता था, उनके इंटरव्यू नहीं लेता था। ये मीडिया की हालत है। उनको अपने घर में आग लगी है उसकी परवाह नहीं है, उनको फिक्र ईरान की है, गाजा की है, किसी और जगह की है। यानी मीडिया इज अंडर देयर कंट्रोल, कोई आदमी बात नहीं करेगा। मेरे लोगों से बातें होती रहती है ना, यानी मेरे भी हमदर्द हैं, मैं आपको ये बताऊँ कि विद इन पाकिस्तान मेरे बहुत से हमदर्द हैं जो मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाते, माजी में भी पहुँचाते हैं, अब भी पहुँचाते हैं। दे नो कि मैं एक सिंसियर आदमी हूँ, वो खुलकर बात करता हूँ, डरता नहीं हूँ, खौफ ज़्यादा नहीं हूँ। जब मेरी मौत आनी है आ जाएगी, वो किसने मुझे मारना मुझे पता नहीं है, लेकिन आई विल नॉट बी इंटिमिडेटेड, आई विल फाइट माई कॉर्नर, मेरी जमात भी फाइट करेगी। वी बिलीव इन पीसफुल रेजोल्यूशन, पीसफुल स्ट्रगल। हमारी स्ट्रगल जो है ना, हम बंदूक के इस्तेमाल को गलत कहते हैं, जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ, हिंदुस्तानी कश्मीर में हुआ, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। अभी भी कोई गड़बड़ हो रही है, हम उसकी मजम्मत करते हैं।
0: All right, Shabir Chaudhary ji, thank you very much for joining in. But for record, what happened in 2019 was a peaceful transition. It was an abrogation of 370 under the law, and the entire country had spoken in united fashion. In Pakistan, Pakistan army is subjugating its people. In Pakistan occupied Kashmir, people are being killed. There are human rights violations, and the orders are coming from Asim Munir. This is the hypocrisy of the Pakistan army that we continue to expose here on NDTV. There have been accusations against me also being a part of a WhatsApp group. That is the mockery of the system of governance and the deep state in Pakistan. But we continue to expose and raise the voice of the common people of the Pakistan occupied Kashmir who want to return to India. And there's some breaking news coming at this hour. This is regarding Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay on Tuesday has inaugurated a special police unit, which is Singapin, to provide enhanced safety to women. Vijay unveiled the insignia for the special force tasked to prevent crimes against women and children and to provide better safety to them. Tamil Nadu Chief Minister Vijay assured swift action, tough punishment for crimes against women, zero tolerance against crimes against women, asserts Tamil Nadu Chief Minister C. Joseph Vijay. Remember, viewers, in the election manifesto, in the run-up to the elections and in the first speech itself, Vijay had promised more action, accountability and certainly protection of women, and the state government will take some swift action in support of the women of the state. Let's listen in to what Chief Minister Vijay had to say.
2: பெண்களுக்கு எதிரான இந்த கொடுமைகள்ல நமக்கு எப்பவுமே ஜீரோ டாலரன்ஸ் தான், அதுல ரொம்ப உறுதியா இருக்கிறோம். சோ சொன்னது எல்லாமே செய்யணும். அதனாலதான் ஆட்சிக்கு வந்த உடனே இந்த குறைஞ்ச நாட்களுக்குள்ளேயே இதை நடைமுறைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறோம். தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பெண்கள், பெண் குழந்தைகள் எல்லாருமே பாதுகாப்பா தன்னம்பிக்கையோடு இருக்கணும். அதுக்கான முதல் கட்டம் தான் இந்த ஸ்டெப். பெண்களை பத்தின சில செய்திகள்லாம் கேட்கும் போது உண்மையிலேயே மனசு பதறுது, கண்ணு கலங்குது, அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல.
0: It's time to slip into a short break here on Asian Wire at 6, but news returns on the other side. Keep watching.

0: Breaking news coming in Uttar Pradesh, viewers. Devotees in Mathura, house shade collapse, mishap near Banke Bihari temple, and we are learning that four devotees have sustained injuries. More details are awaited, but this is the latest that we are picking up. This is a very important pilgrimage in Mathura. The mishap is near the Banke Bihari temple in a house shade collapse. Four people have been injured. This is a ground report that we are picking up, and let's listen.
1: मंदिर के पास एक बने एक घर का छज्जा गिर गया। आप देख सकते हैं ये ऊपर जो छज्जा है अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। स्थिति आपको मैं दिखाऊं कि नीचे की यहाँ पर छज्जे का मलबा पड़ा हुआ है और इसमें लगभग 4 से 5 श्रद्धालु यहाँ पर घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप इधर की स्थिति में आपको दिखाऊँ तो पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े हैं जिन्हें जो घायल हुए हैं उन्हें अस्पताल में भिजवाया गया है और जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया, आवागमन एकदम बंद कर दिया गया। जब ये हादसा हुआ तो ये गली आप देख रहे हैं ये खचाखच भरी हुई थी और इधर की आज साइड में आपको दिखाऊँ कि मंदिर की ओर रास्ता जाता है और एक रास्ता अगर दिखाऊँ तो मैं इधर की साइड ये जाता है, खून यहाँ पर पड़ा हुआ है। आपको ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। हादसा एक बड़ा है, भयानक है और ये जिस तरीके से हादसा हुआ कैसे हुआ बताया जा रहा है कि बंदर यहाँ पर लड़ रहे थे, अचानक वो यहाँ फिर कूद गए, कूदने के बाद जो छज्जा था वो गिर गया। हमारे साथ यहाँ पर बाके बिहारी मंदिर की सेवा है मयंक जी, कैसे हुआ ये हादसा?
2: देखिए, एक तो जर्जर इमारत है ये ऊपर, दूसरा इस गली से भक्तों का आवागमन लगा रहता इसी गेट से, शनि बिहारी से पब्लिक आती है और कभी कभार तो ऐसी जाम की स्थिति हो जाती है यहाँ कि आधे आधे पौन पौन घंटे यहाँ भीड़ खड़ी रहती है। और जैसा कि आपको दिख रहा है जिस मकान ऊपर, एक्चुअल हुआ क्या है कि यहाँ ऊपर जब बंदरों के आपस में लड़ने की बदौलत इस पर करीब 10-15 बंदर इस पर छज्जे पर कूदे जिससे कि ये यहाँ ऊपर से वो पूरा मलबा गिर गया। 4 श्रद्धालु यहाँ घायल हैं, एक की स्थिति बड़ी नाजुक बनी हुई है, सिर में बड़ी बुरी तरह इन लोगों के चोट लगी है, बहुत परेशानी हुई है।
1: देखिए यहाँ पर बता रहे हैं कि 4 से 5 श्रद्धालु घायल यहाँ पर हुए हैं और जिन्हें अस्पताल के लिए भेजा गया। मथुरा से सौरभ गौतम, NDTV इंडिया। बांके बिहारी
0: All right, viewers, that's all we had on Nationwide at 6. But the prime time continues here on NDTV. Keep watching.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: मीठा या नमकीन चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट। बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI/UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
1: देश का टायर जेके टायर।
2: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
3: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स द वे इट कनेक्ट्स।
4: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
3: From infrastructure to digital access, from reform to real impact,

0: देश का टायर जेके टायर।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: इंडिया इज रीवायरिंग द वे इट बिल्ड्स, द वे इट कनेक्ट्स।
3: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
2: फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर टू डिजिटल एक्सेस, फ्रॉम रिफॉर्म टू रियल इंपैक्ट, बट द बिग क्वेश्चन इज व्हाट विल डिफाइन द नेक्स्ट इंडिया। NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: refused to allow all the leaders inside, the Congress leaders staged a dharna outside the main gate. Natarajan is accused of allegedly concealing information regarding a pending criminal case in a Hyderabad court. While the BJP has announced three candidates, Meenakshi Natarajan was considered likely to win. Sample the reactions.
1: एक लीगल नोटिस की आड़ में जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था, जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था, उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी. हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा, उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई, उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया. इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नियत क्या है.
2: महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली. राजनीतिक बातें बहुत सारी है पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को. ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है. कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी.
3: कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए? कहाँ से आए हमारे?
4: तेलंगाना से.
3: कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं. मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी. हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं. तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएँ या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास, मोदी जी के काम पे विश्वास.
0: On that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.
5: He has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else. Only on NDTV Network. India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
6: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है.
5: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
7: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है, उनकी नियत क्या है?
1: महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। राजनीतिक बातें बहुत सारी है पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है, कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी।
2: कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए
3: जी?
2: कहाँ से आए हमारे?
3: तेलंगाना से।
2: कहाँ से आए भाई? और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं, मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है, तेलंगाना में सरकार इनकी है, सरकार इनकी है, तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी, हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं। तो कांग्रेस की ये स्थिति है, ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं, चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पर विश्वास, मोदी जी के काम पर विश्वास।
4: On that note, we are slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.
5: Across the country,
6: he has tracked the pulse of power from Washington to Korea. Witnessed history being made in global capitals and conflict zones. Brought clarity to complex issues of national security and international affairs. Aditya Raj Kaul, covering international affairs like no one else, only on NDTV Network. India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
7: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है।
6: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit. A closer look at governance, growth and the future of a new India on the NDTV network.
8: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: India is rewiring. The way it builds, the way it connects.
1: विकसित भारत के निर्माण के लिए जरूरी हर क्षेत्र में भारत तेजी से काम कर रहा है.
0: From infrastructure to digital access, from reform to real impact. But the big question is, what will define the next India? NDTV Ignite, the Future India Summit.

0: struggle. I came into power after going through a lot of struggle. And I shall fight again on the streets.
1: Kirti
0: Azad, she's got a great resolve.
1: And what did you say to her, sir, as one of her soldiers?
0: I just told her that I'll be there. I said, I'll be there. I'm not a traitor. I believe in when the going gets tough, the tough gets going, and Didi, I'm with you. I shall stay with you. This is the time which shows a man's character, a person's character. You have many friends during good days. During bad days, you have none. And I'm a friend of bad days. And you can ask all those friends who know me.
1: Okay. I'm going to leave it there. Kirti Azad, Thank you, as always, good to have you here on NDTV. Thank you for
0: speaking
1: to me.
0: Thank you, Shiv. Thank you very much.
2: Now, in a shocking turn of events, the nomination paper of Congress candidate Meenakshi Natarajan for the Rajya Sabha election in Madhya Pradesh has been rejected. High drama erupted outside Election Commission office in Delhi. Jairam Ramesh reached the Election Commission office and had a heated argument with CISF personnel who told him they had no prior information about the visit and that all the officers had left for the day. But KC Venugopal also reached the EC office. Delhi police personnel were subsequently called to the spot after CISF personnel refused to allow all the leaders inside. The Congress leaders staged a dharna outside the main gate. Natarajan is accused of allegedly concealing information regarding a pending criminal case in a Hyderabad court. While the BJP has announced three candidates, Meenakshi Natarajan was considered likely to win. Sample the reactions.
3: एक लीगल नोटिस की आड़ में जो कि अभी जिसका कॉग्निसेंस भी नहीं हुआ था जो संज्ञान में भी नहीं आया गया था उसके आधार पर इलेक्शन पिटीशन को चुनौती दी हमारे दोनों वकील साथियों ने सारे आर्ग्यूमेंट्स उनके सामने रखे और जैसा उन्होंने कहा उन आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरह से हियरिंग तक नहीं दी गई उसका उल्लेख भी नहीं हुआ और एक फैसला आया इसके बाद ये बहुत स्पष्ट है कि उनकी नीति क्या है उनकी नियत क्या है
4: महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली राजनीतिक बातें बहुत सारी हैं पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी एक कदम पीछे नहीं हटेगी
5: कांग्रेस के अंदर हमें जो कागज मिले वो किसने दिए कहाँ से आए हमारे
6: तेलंगाना से
5: कहाँ से आए भाई और इसलिए कांग्रेस की क्या स्थिति आप समझ सकते हैं मतलब हमारे पास तेलंगाना का कागज आ रहा है तेलंगाना में सरकार इनकी है सरकार इनकी है तो आप समझ सकते हैं आपकी हमें कांग्रेस के ही लोगों ने जानकारी दी होगी हमारे पास तो कोई जानकारी थी नहीं तो कांग्रेस की ये स्थिति है ये भले ही बेंगलोर ले जाएं या लंदन ले जाएं चुनाव हम जीतते क्योंकि सभी देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास मोदी जी के काम पे विश्वास
2: On that note, we're slipping into a very short break. Don't go anywhere. Keep watching NDTV.